0: SWA 99.9.
1: The difference is the music.
2: So meri har saah vich tu hi tu rahe. So us parmatma de naal edda jud ke rehna chahida. Sama is vele 8:17 ho gaye ne. Tu sun rahe apna man paunda Punjabi gitan da program Mela gitan da SWA 99.9 FM to Sham Kumar de naal. चलो अगले सैगमेंट से कुछ गाने सुनते हैं, गीत भी गल्लां भी ते यादां भी। सुरां दी महक ते यादां दे सफर दे विच हर धुन नाल जुड़ियां अनमोल यादां दे विच कुछ गीत सुनते हैं। अज तो 30-40 साल पुराने कुछ गीतां दा सफर वो सुनते हैं। तुहाडी पसंद दे भी कोई गीत होण तां जरूर दस्या करो, कोशिश करांगे उन्हां नूं वी पूरे करन दे। चलो अज दे सफर च एक कुछ गीत सुनदे हां।